0: मुक्त भारत अभियान
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीज

0: रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
2: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: இசையின் வர்ண ஜாலமாய் இது உங்கள் ஆகாஷ்வாணி திருநெல்வேலி வானொலியின் பண்பலை 102.6.

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग
2: आप सभी श्रोताओं का उमंग कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं विमलेश।
1: नमस्कार, मैं हूं अजीत। आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार, जिसे हमें भेजा है कस्बा बराड़ा, जिला अंबाला, हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, विजेंद्र कुमार, जयजान, नूर, नमन, सिमरत, मन्नत, गुरकीरत राहुल और गुरशब्द राहुल जी ने। लिखते हैं,
2: खुद को बेहतर बनाना ही असली प्रतिस्पर्धा है। किसी से भी ईर्ष्या का सीधा मतलब ये है कि हमने सामने वाले व्यक्ति को हमसे ज्यादा श्रेष्ठ मान लिया है।
1: बहुत बहुत सुंदर विचार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है तहसील ठियोग, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान जी का।
2: दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई, बाबू, दिव्यांश और सूरज कुमार ढाकसे जी लिखते हैं,
1: प्रिय अजीत जी और विमलेश जी, आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार। हमें आपका उमंग कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है। हम आपका उमंग कार्यक्रम FM और DTH के रेडियो चैनल पर सुनते हैं। आपके उमंग कार्यक्रम में एक से बढ़कर एक जानकारियां सुनने को मिलती हैं, जो हमें बेहद पसंद आती हैं। धन्यवाद।
2: छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, निखिल वर्मा, प्रिंस वर्मा और यशस्वी वर्मा।
1: आप सभी श्रोताओं को हम धन्यवाद प्रस्तुत करते हैं संदेशों को भेजने के लिए। निवेदन है कि इसी प्रकार से हमारे उमंग कार्यक्रम से जुड़े रहिए। आप सबका स्वागत है एक बार फिर से हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए में। आइए अब चलते हैं इसकी अगली कड़ी में। इस सप्ताह श्रोताओं हम बात कर रहे हैं खनिज पदार्थों की।
2: अब तक हमारी चर्चा का विषय रहा कोयला, सोना और हीरा। तो अजीत जी, आज हमारा क्या विषय रहेगा? श्रोता बड़ी उत्सुकता से ये जानना चाहते हैं।
1: विमलेश जी, आज हमारा विषय बहुत रोचक होने जा रहा है। आज हम एक ऐसे खनिज की बात करेंगे जो पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाता है, और तो और हम उस पर चलते फिरते भी हैं। अच्छा चलिए, श्रोताओं को दीजिए कुछ हिंट।
2: ठीक है, तो श्रोताओं, उस खनिज का उपयोग हमारे कंप्यूटर, मोबाइल और अनेक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में भी किया

0: जाता है, ये हमारे शरीर में भी पाया जाता है।
1: और ये कुछ पौधों में भी पाया जाता है, विशेषकर बांस और घास में तो पाया ही जाता है।
0: श्रोताओं, ये हमारे स्मार्टफोन और कंप्यूटर्स में तो होता ही है, इंटरनेट के उपकरणों और अंतरिक्ष के उपग्रहों में भी चिप्स के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, और हाँ, इससे कांच भी बनता है। तो श्रोताओं, आपने समझ लिया होगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं।
1: अगर आप सोच रहे हैं कि वो खनिज पदार्थ सिलिका है तो आप बिल्कुल सही हैं। आइए अब जानते हैं कि सिलिका क्या है। विमलेश जी, आपसे करते हैं शुरुआत।
0: श्रोताओं, सिलिका सिलिकॉन और ऑक्सीजन से बना एक प्राकृतिक खनिज है। ये पृथ्वी की भूपरपटी में सबसे अधिक पाए जाने वाले खनिज पदार्थों में से एक है।

0: कि हम किसकी बात कर रहे हैं?
1: अगर आप सोच रहे हैं कि वो खनिज पदार्थ सिलिका है तो आप बिल्कुल सही हैं। आइए अब जानते हैं कि सिलिका क्या है। विमलेश जी, आपसे करते हैं शुरुआत।
0: श्रोताओं, सिलिका सिलिकॉन और ऑक्सीजन से बना एक प्राकृतिक खनिज है। ये पृथ्वी की भूपरपटी में सबसे अधिक पाए जाने वाले खनिज पदार्थों में से एक है। आइए सबसे पहले जानते हैं सिलिका शब्द कहाँ से आया।
1: श्रोताओं, सिलिका शब्द लैटिन भाषा के सिलेक्स शब्द से आया है, जिसका अर्थ है चकमक या कठोर पत्थर। बता दें कि पृथ्वी की सामान्य रेत का अधिकांश भाग सिलिका से ही बना होता है। इसी सिलिका से एक विशेष वैज्ञानिक प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन को अलग करके सिलिकॉन बनाया जाता है।
0: और इसी सिलिकॉन से बनते हैं मोबाइल, कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में लगाए जाने वाले चिप्स। सुंदर क्वार्ट्ज क्रिस्टल वास्तव में सिलिकॉन का ही रूप हैं। अजीत जी, एक प्रश्न मेरे मन में आता है, वो ये है कि क्या जिस रेत या धूल पर हम चलते हैं, क्या वही सिलिका है?
1: विमलेश जी, ऐसा कहना आंशिक रूप से सही है पर पूरी तरह से नहीं। ये जानना जरूरी है कि साधारण रेत या धूल के कण पूरी तरह से सिलिका नहीं होते।
0: जी
1: धूल कई प्रकार के कणों का मिश्रण होती है, जैसे मिट्टी, जैविक पदार्थों के अवशेष और कुछ खनिज।
0: बता दें कि सिलिका सबसे अधिक रेगिस्तान और समुद्र की रेत में पाई जाती है, लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि ऐसा क्यों?
1: ऐसा इसलिए कि रेगिस्तान बनते हैं बहुत सारी चट्टानों के टूटने से। इन चट्टानों में खनिज पदार्थों के रूप में सिलिका पहले से ही मौजूद होती है। चट्टानों के टूटने से सिलिका के कण रेत और मिट्टी में फैल जाते हैं। और जहां तक समुद्र की बात है, यहाँ सिलिका की मात्रा बहुत अधिक होती है, क्योंकि नदियां समुद्र की ओर बढ़ती हुई पहाड़ों और चट्टानों को जब अपने जल प्रवाह से घिसती हैं, तो उन चट्टानों में मौजूद सिलिका के कणों को समुद्र तक ले आती हैं। श्रोताओं, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि समुद्र तट की एक मुट्ठी रेत में मौजूद सिलिका के कणों ने हजारों किलोमीटर की यात्रा की है। तो विमलेश जी, हजारों वर्षों से मनुष्य सिलिका या रेत को देखता आया है,
0: जी,
1: लेकिन ये विचार कैसे आया कि ये इतना महत्वपूर्ण है?
0: इसकी कहानी बड़ी रोचक है। 1824 में स्वीडन के रसायन शास्त्री जॉन जेकब वर्जिलियास ने पहली बार सिलिका से ऑक्सीजन को अलग करके सिलिकॉन की खोज की। लेकिन प्राचीन काल से ही मिस्र और चीन के लोगों ने इसके द्वारा कांच और आभूषण बनाने शुरू कर दिए थे, क्योंकि ये बहुत चमकदार होता है। 1906 में पहली बार इससे पहला इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाया गया।
1: फिर धीरे धीरे शोध होते गए और आज ये मानव सभ्यता का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। आज हम इसके बिना सौंदर्य प्रसाधनों, चिकित्सकीय उपकरणों, उद्योगों, कंप्यूटर, मोबाइल फोन्स, इंटरनेट, सौर उपकरणों और उपग्रहों की कल्पना तक नहीं कर सकते।
0: तो श्रोताओं, ये थी आज की जानकारी सिलिका खनिज के बारे में। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से।
1: तो हमारा आज का प्रश्न है, सिलिका और सिलिकॉन में क्या फर्क है? आप हमारे IVRS नंबर पर यानी 8800-440-5559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी CIT NCERT को फॉलो जरूर कीजिए। आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है, कैसे जानते हैं हम अपना अतीत।
0: इस कार्यक्रम में विशेष रूप से इतिहास के विभिन्न स्रोतों के बारे में विस्तार से बताया गया है और संदेश दिया गया है कि हमारी ऐतिहासिक विरासत महान है।
2: दोस्तों नमस्कार, एक नजर अतीत की ओर श्रृंखला में आपका स्वागत है। ये जानने के लिए कि कल क्या हुआ था या आज क्या हो रहा है, हम रेडियो सुन सकते हैं, टेलीविजन देख सकते हैं या फिर अखबार पढ़ सकते हैं, लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था ये कैसे जाना जा सकता
3: है ना साथियों? अच्छा सवाल। यही सवाल निधि और आदिका के मन में भी था। वे छुट्टियों में अपनी नानी के घर गई हुई थी। हुआ यूं कि एक दिन वे समाचार पत्र पढ़ रही थीं। अचानक उनकी निगाह समाचार पत्र के एक अंश पर पड़ी, जहां छपा था, लगभग 2000 साल पहले। वे सोचने लगीं,
4: भला ये कोई कैसे जान सकता है कि 2000 साल पहले क्या हुआ था?
5: हाँ, 2000 साल पहले।
6: नानी माँ?
7: हाँ निधि।
6: ओ नानी माँ, कहाँ हो?
7: अरे यही हूँ, आ जाओ निधि, आओ आदिका बेटी।
6: अरे ये क्या सारे बक्से खोल रखे हैं, क्या कर रही हो?
7: हाँ हाँ, बताती हूँ, जल्दी क्या है?
6: कितने ढेर सारे कपड़े हैं नानी माँ, ये तो बहुत पुराने हैं ना?
7: हाँ बेटी, बहुत पुराने हैं, तुमसे और तुम्हारी मम्मी से भी पुराने।

0: और पता है निधि, आधिका जानती हैं आप ये कपड़े हमने कब पहने थे?
1: नहीं पता, बताओ ना रानी माँ।
0: अरे ये कपड़े तो हमारी शादी के हैं।
1: नाना नानी की शादी के कपड़े? भाई वाह, नानी पहले और आज के कपड़े कितने अलग अलग दिखते हैं, है ना?
0: हाँ हाँ निधि, समय के साथ साथ सारी चीजें बदल जाती हैं।
2: नानी एक बात मेरे मन में भी आ रही है, और वो ये कि बहुत पुराने बातों को कैसे जाना जा सकता है।
0: अरे बिटिया, ये बताने के लिए तो हमारे पंकज से बढ़िया और कोई नहीं हो सकता।
1: हाँ हाँ, मामा जी से पूछेंगे।
0: हाँ बिटिया, वो तो पुरातत्ववेत्ता है, है ना?
1: मामा जी, मामा जी।
3: अरे निधि, ओ आधिका, कैसी कट रही तुम्हारी छुट्टियाँ?
2: बहुत अच्छी तरह मामा जी, आज सुबह हम समाचार पत्र पढ़ रहे थे।
3: ये तो बहुत अच्छी बात है
1: जी। उसमें छपा था लगभग 2000 साल पहले, ये लेख किसी सभ्यता के बारे में था मामा जी। भला ये कोई कैसे जान सकता है कि 2000 साल पहले क्या हुआ था?
3: अच्छा अच्छा, तो ये बात है। आओ आओ यहाँ बैठो। अरे बैठो बैठो, मैं तुम्हें कुछ तस्वीरें दिखाता हूँ, जरा इसे देखो, बता सकती हो कि ये क्या है?
2: ये किसी खुदरी सी शीट की तस्वीर है, इसमें कुछ लिखा गया है, शायद गोदकर।
3: शाबाश निधि, तुमने बिल्कुल ठीक पहचाना। ये खुरदरी शीट दरअसल एक पेड़ की छाल है, जिसे भूर्ज वृक्ष कहा जाता है।
1: अच्छा, भूर्ज वृक्ष।
3: हाँ, भूर्ज वृक्ष हिमालय क्षेत्र में मिलता है। इसकी छाल पर या ताड़ के पत्तों पर उन दिनों लोग हाथ से लिखते थे। हाथ से लिखी होने के कारण ये पांडुलिपि कही जाती है।
2: पांडुलिपि? ये हमें कहाँ मिली है
3: निधि? ये पांडुलिपियाँ ज्यादातर प्राचीन मंदिरों और विहारों से खुदाई में प्राप्त हुई हैं। तुम्हें पता है कुछ पुरानी गुफाओं में भी मिली हैं।
2: अच्छा,
3: और बेटी मैं तुम्हें बताता हूँ, इन पांडुलिपियों में उस समय की धार्मिक परंपराओं, राजाओं के जीवन, दवाइयों, कला और विज्ञान की जानकारी हमें मिलती है। हमें कई नाटक और कविताएं भी मिलती हैं।
1: ये किस भाषा में है?
3: बहुत अच्छा सवाल पूछा है बेटी तुमने। ये ज्यादातर संस्कृत, तमिल और प्राकृत भाषा में है। उन दिनों प्राकृत भाषा का इस्तेमाल आम लोग करते थे।
1: मामा जी अब आगे भी बताइए ना।
3: हाँ हाँ, बताता हूँ बताता हूँ, अरे धैर्य रखो। अतीत या पुराने समय के बारे में हमें पांडुलिपियों से तो पता चलता ही है, लेकिन हमें बहुत सारी जानकारियाँ अभिलेखों और शिलालेखों से भी मिलती हैं।
1: अच्छा,
3: अभिलेख को अंग्रेजी में इंस्क्रिप्शन कहते हैं। इंस्क्रिप्शन शब्द से ही इंस्क्राइब निकला है, जिसका मतलब है लिखना, खोद कर लिखना या उत्कीर्ण करना। इसको उकेरना भी कहते हैं।
1: अच्छा,
3: और हाँ, अतीत को जानने के लिए हम अभिलेखों का भी अध्ययन करते हैं। ऐसे अभिलेख हमें पत्थर या धातु पर खोद कर लिखे हुए मिलते हैं। लगभग 2250 वर्ष पुराने पत्थर पर लिखा अभिलेख या शिलालेख हमें वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से मिला है।
2: अच्छा,
3: ये सम्राट अशोक के आदेश पर लिखा गया है। पत्थर पर लिखने की कला को एपिग्राफी भी कहते हैं, और शिलालेख को
2: एपिग्राफ।
3: शाबाश निधि।
2: मामा जी, अभिलेख और शिलालेख में क्या फर्क है?
3: देखो, अभिलेख को किसी भी कठोर वस्तु पर लिखा जा सकता है, मतलब ये कोई धातु भी हो सकती है। ये अभिलेख हमें पकी मिट्टी, सिक्के, तांबे और चांदी पर भी लिखे मिले हैं। लेकिन शिला का मतलब होता है पत्थर, ये लेख पत्थरों पर ही लिखे जाते हैं।
2: मामा जी आपने शिलालेख की बात की, ऐसे पत्थर पर हमें क्या लिखा हुआ मिलता है?
3: ऐसे पत्थर पर कभी कभी राजा लोग अपने आदेशों को खुदवाते या उत्कीर्ण करवाते थे, ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें

0: और उसका पालन कर सकें।
1: मामा जी, मैंने सुना है कि भूविज्ञानियों के अध्ययन से भी हमें अपने अतीत के बारे में पता चलता है।
0: आदिका, बिल्कुल ठीक सुना है तुमने। भूविज्ञानी मिट्टी के नमूनों, पुराने पत्थरों, पहाड़ों और महासागरों का अध्ययन करते हैं और पता लगाते हैं कि पहले पृथ्वी कैसी थी और आज क्या उसका स्वरूप कुछ बदला है।
1: ओह, कितना रोचक है ये सब जानना।
0: हाँ आदिका, रोचक तो है ही। तो दोस्तों, हमारा समय अब समाप्त होता है। इस वायदे के साथ कि एक नजर अतीत की ओर श्रृंखला में आपसे फिर भेंट होगी। अब आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।
2: तो साथियों, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। अब आपके लिए कुछ करने को, तो चलिए बनाते हैं अभिलेख। तो सबसे पहले आप मुलायम मिट्टी या क्ले लीजिए, फिर उसे हाथों से एक पट्टी की तरह बना लीजिए और उसे गोल या चौकोर जैसा कोई आकार दीजिए। अब सतह को किसी सपाट चीज से चिकना कर दीजिए। तो अभिलेख के लिए अब आपकी पट्टी तैयार है। इस मुलायम मिट्टी पर लिखने के लिए आप पेंसिल या किसी नुकीली लकड़ी का प्रयोग कर सकते हैं। अब इस मुलायम मिट्टी पर अपनी मातृभाषा के कुछ अक्षर या शब्द लिखिए या कोई चित्र बनाइए। मिट्टी को सुखा लीजिए और फिर विद्यालय में अपने मित्रों और शिक्षकों को दिखाइए और इसके बाद इसे सहेज कर रख लीजिए। हो गया ना तैयार आपका अभिलेख?
3: आशा है श्रोता मित्रों, आपको ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा। श्रोताओं, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह माना जाता है, लेकिन सच ये है कि इससे पहले भी बहुत से लोगों ने स्वतंत्रता के लिए स्थानीय रूप से अपनी आवाजें बुलंद की।
2: इनमें से बहुत सारे जनजातीय या आदिवासी समूह थे जिनमें बिरसा मुंडा, सिद्धो कान्हू इत्यादि बहुत प्रसिद्ध हैं।
3: जी।
2: लेकिन आज श्रोताओं, आपको विशेष रूप से हम बताना चाहते हैं कि कई जनजातीय महिलाएं भी रही
3: जिन्होंने स्थानीय रूप से स्वतंत्रता का झंडा बुलंद किया। इनमें आज हम सुनेंगे कार्यक्रम रानी दुर्गावती पर, जो गोंड आदिवासी समुदाय से संबंधित हैं। उनकी वीरता के किस्से आज भी गोंडवाना भूमि यानी आज के छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में गाए और सुनाए जाते हैं।
2: तो आइए सुनते हैं श्रोताओं कार्यक्रम रानी दुर्गावती।
4: हमारे देश के इतिहास में स्त्रियों के त्याग और महानता की अनगिनत कहानियां मिलती हैं। ऐसी कुछ विरल स्त्रियों में से एक है रानी दुर्गावती। दुर्गावती का जन्म मध्य प्रदेश के महोबा नामक स्थान पर सन 1524 में हुआ था। उसके पिता कीर्ति सिंह कालंजर के राजा थे। दुर्गावती अभी छोटी ही थी कि उसकी मां का देहांत हो गया। पिता ने उसे बचपन से ही घुड़सवारी और अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा दी और ये देखकर बहुत खुश होते कि उनकी बेटी राजनीति और शासन की समस्याओं को सुलझाने में भी उतनी ही कुशल थी जितनी तीर चलाने में। एक बार की बात है,

0: Şabaş. Şabaş, Muti, şabaş. Aş tumne khub saath diya. हाँ, मैं जानती हूँ कि तुम थक गए हो, तुम्हें प्यास भी लग रही है, पर क्या करो, तुम तो शिकार के पीछे इतना तेज दौड़े कि अपने सब साथी पीछे छूट गए। चलो कुछ देर यहीं आराम करते हैं, तब तक बाकी लोग भी आ जाएंगे। ये लो, कुछ लोग तो शायद आ ही पहुंचे। अरे ये क्या, ये तो हमारे साथियों में से कोई नहीं। इसके कपड़ों से तो लगता है कि ये कोई मुगल सरदार है।
1: माशाल्लाह, ऐसी खूबसूरत लड़की और वो भी इस बयाबान जंगल में।
0: आपने मेरा रूप तो देखा, पर शायद ये नहीं देखा कि मेरे हाथ में

0: तीर कमान भी है।
1: जी हाँ देख रहा हूँ, पर सच पूछिए तो आप जैसी हसीन लड़कियों के हाथ में तीर कमान शोभा नहीं देते।
0: बस बस वहीं खड़े रहो, शायद तुम नहीं जानते कि मैं कालंजर की राजकुमारी दुर्गावती हूँ।
1: अखा तो आप ही हैं राजकुमारी दुर्गावती। अरे वाह, जैसा सुना था वैसा ही पाया। अरे आपकी सुंदरता और बहादुरी के किस्से तो दूर दूर तक फैले हुए हैं। इस इलाके के सभी राजे रजवाड़े आपको पाने की हसरत रखते हैं। ज़हे नसीब जो आपके दीदार हुए। अब जरा
0: फिर आगे बढ़ रहे हो, क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? कौन हो तुम?
1: मैं आसिफ खान हूं, कड़ा का सूबेदार। आपको अपनी मलिका बनाना चाहता हूं, और आज जब ऐसा सुनहरी मौका हाथ आ ही गया है तो अभी आपको अपने साथ ले जाऊंगा।
0: जरा हाथ तो लगाकर देख आसिफ खान, तूने दुर्गावती का रूप देखा, अब दुर्गा का रूप भी देख।
1: अच्छा वाह, और
0: हाँ तो आसिफ खान, अब जरा अपनी बात दोहराओ। मेरी तलवार तुम्हारा लहू चखने को बेचैन है।
1: मुझे माफ कर दीजिए राजकुमारी जी, मैं बहुत शर्मिंदा हूं, फिर कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। आप तो मेरी बहन जैसी हैं।
0: ठीक है, पर आइंदा कभी किसी लड़की पर बुरी नजर मत डालना, वरना इस देश की बेटियों को दुर्गा और चंडी बनते देर नहीं लगती।
1: अजी मेरी तौबा, जो अब किसी की तरफ आंख उठाकर भी देखूं।
0: चल बेटा मोती।
1: आज की इस बेइज्जती को मैं कभी नहीं भूलूंगा दुर्गावती। तुमसे आज की हार का बदला ना लिया तो मेरा नाम भी आसिफ खान नहीं।
2: एक बार दलपरचाह ने राजा कीर्ति सिंह को शिकार खेलने के लिए मनियागढ़ के जंगलों में आने का निमंत्रण दिया। शिकार की शौकीन दुर्गावती भी साथ गई। दलपत शाह इस साहसी युवती पर मुग्ध हो गए और उसे अपनी पत्नी बनाने का निश्चय कर लिया। दोनों का विधिवत विवाह हुआ। डेढ़ वर्ष बाद दुर्गावती ने एक पुत्र को जन्म दिया। बालक का नाम वीर नारायण रखा गया। लेकिन दुर्गावती के जीवन का यह सुख शांति का समय अधिक दिन नहीं रहा।
0: आधार सिंह जी, आप स्वर्गीय महाराज के मंत्री ही नहीं थे, आप उनके मित्र और चिंतक भी थे। आप ही बताइए मैं क्या करूं।
3: महारानी, आप स्वयं योग्य हैं, मैं भला आपको क्या सलाह दे सकता हूं। पर हां, इतना अवश्य जानता हूं कि स्वर्गीय महाराज अपने जीवन काल में बराबर राजकाज में आपसे सलाह लेते थे और आपकी राय की कद्र करते थे। वे ये कभी पसंद नहीं करते कि आप कायरों की भांति जीवन से मुंह मोड़ लें।
0: ठीक है आधार सिंह जी, घोषणा करवा दीजिए, कुमार वीर नारायण गोंडवाने के नए राजा हैं और रानी दुर्गावती आज से सिर्फ उनकी ही नहीं समस्त गोंड राज्य की माता है।
3: राजमाता की जय, राजमाता की जय हो, राजमाता की जय हो।
2: रानी दुर्गावती ने शासन की बागडोर अपने मजबूत हाथों में संभाल ली। उसने किसानों को अधिक उत्पादन के लिए प्रेरित किया, उद्योगों को प्रोत्साहित किया, पानी की समुचित व्यवस्था के लिए कुएं और तालाब खुदवाए, पुराने कुओं की मरम्मत करवाई। वह राज्य के सभी भागों के अधिकारियों को बुलाकर उनकी समस्याओं के बारे में बातचीत करती और कभी कभी स्वयं भी दौरा करती थी। राजकीय कोष और सेना की रानी स्वयं देखभाल करती थी। उसके कुशल शासन में गोंडवाना एक संपन्न राज्य बन गया। दिल्ली के मुगल बादशाह अकबर ने गोंडवाना पर अधिकार

0: करना चाहा। आसफ खां के नेतृत्व में मुगलों की बड़ी भारी फौज गोंडवाना की ओर चल पड़ी। रानी पहले से सतर्क थी। आक्रमण हुआ। रानी की सेना बहुत बहादुरी से लड़ी। कई मोर्चों पर तो उसकी जीत भी हुई। लेकिन रानी के एक पुराने शत्रु रेवतीगढ़ के राजा सुधार सिंह ने धोखा दिया। सुधार सिंह साधु के वेश में इधर उधर फिरता और जासूसी करता। उसी ने अकबर को गढ़ा पर हमला करने के लिए प्रेरित किया था। इनाम जागीर पाने के लालच में वो इधर की खबर उधर पहुंचाया करता था।
1: अलख निरंजन।
2: साधु बाबा।
1: अब अच्छा,
2: यहाँ कहाँ घुसे चले आ रहे हो? ये रानी दुर्गावती का किला है, साधुओं का जमघट नहीं।
1: अरे वो तो हम भी जानते हैं बच्चा, लेकिन साधु तो रमता राम होते हैं, आज यहाँ कल वहाँ। अभी मुगलों की छावनी से चले आ रहे हैं
2: क्या?
1: हाँ, बाप रे बाप, क्या लश्कर है बच्चा
2: है?
1: हाथी, घोड़े, तोप, बंदूक, बड़ा भारी इंतजाम है।
2: अच्छा,
1: हाँ
2: बहुत बड़ी फौज है।
1: और नहीं तो क्या बच्चा, अरे मुगल लोग जब चूहे के शिकार पर भी निकलते हैं ना, तो शेर के शिकार की तैयारी करके चलते हैं। और फिर यहाँ, अरे यहाँ तो रानी दुर्गावती से मुकाबला है, बड़ी जबरदस्त तैयारी करके निकले हैं बच्चा।
2: तो हमारे यहाँ भी जबरदस्त तैयारी है बाबा।
1: अच्छा,
2: रानी माँ ने रसद, पानी, हथियार सबका ऐसा बंदोबस्त किया है कि मुगल साल भर भी घेरा डाले पड़े रहे तो भी गढ़ में किसी चीज की कमी नहीं होगी।
1: हैं? क्या कहते हो बच्चा, साल भर का इंतजाम है?
2: बिल्कुल है।
1: और भगवान ना करें कोई हारी बीमारी ऐसी हो जाए कि बाहर निकलना जरूरी हो जाए तो?
2: उसका भी इंतजाम है।
1: अरे हटाओ, बाहर मुगल फौज घेरा डाले पड़ी हो तो तुम्हारी रानी भला क्या इंतजाम कर देगी?
2: देखो हा? तुम्हें बताने में कोई हर्ज नहीं, पर किसी और से ना कहना।
1: नहीं नहीं बच्चा, किसी से नहीं कहेंगे।
2: हाँ, हमारे महल से एक गुप्त सुरंग शहर के बाहर वाले बगीचे तक जाती है।
1: गुप्त सुरंगों का पता तुम्हारे जैसे मामूली सैनिकों को कैसे पता चलेगा? यूं ही डींग मार रहे हो तुम।
2: यूं ही डींग नहीं मारता साधु महाराज, मैं बदन सिंह हूं, बदन सिंह, रानी माँ का खास सेवक। इतना सा था जब मुझ अनाथ को रानी माँ ने सहारा दिया था।
0: पुरुष वेश में लड़ रही रानी के बहादुरी देखकर मुगलों के छक्के छूट गए। मुगल सैनिक जान बचाकर इधर उधर भागने लगे। दूसरे दिन फिर घमासान युद्ध हुआ। वीर नारायण घायल हो गए थे, उन्हें रणभूमि से दूर चौरागढ़ भेज दिया गया। रानी हाथी पर बैठकर लड़ रही थी कि तभी
3: क्या हुआ रानी माँ? अरे आपकी कनपटी में तीर लगा है माँ।
4: ओ मेरा ध्यान छोड़ गनू, तू हाथी को संभाल।
3: हाथी को क्या संभालू रानी माँ, ये तो पहले ही भालों से छिप चुका है। अब तो कुछ देर संभला रह सके तो बड़ी बात है, लेकिन आप, ओह कितना खून बह रहा है।
4: ये खून तो वीरांगनाओं का आभूषण है गनू।
3: रानी माँ देर न कीजिए, आप मेरा ये घोला लेकर यहाँ से शीघ्र निकल जाइए। चौरागढ़ में राजा साहब भी हैं, वहीं जाना ठीक रहेगा।
4: अब इसका समय नहीं रहा आधार सिंह जी,

0: मुगल सैनिक चारों ओर से घिरते आ रहे हैं। आसिफ खान से मेरा पुराना बैर है, उसके हाथों अपनी दुर्गत कराने से अच्छा है आप अपने हाथों मेरा अंत कर दें।
1: नहीं नहीं रानी माँ, नहीं, ये पाप मुझसे नहीं हो सकेगा, इसकी आज्ञा मुझे मत दीजिए रानी माँ।
0: अच्छा तो गनू बेटा, तू अपनी कटार मुझे दे।
1: मेरी कटार से अपने प्राण लेकर तुम मुझे इस तरह पापी नहीं बना सकती माँ। मैं तुम्हारा महावत हूँ, तुम्हारे साथ ही रहूंगा।
2: श्रोताओं, इसी के साथ अब हमारा आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
3: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।
4: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
5: நிறைவு பெற்றது NCERT வழங்கும் விளம்பரதார நிகழ்ச்சி. இன்னும் சில நொடிகளில் கேட்கலாம் 4 மணிக்கான செய்திச் சுருக்கம். அதனைத் தொடர்ந்து புதிய தும்பி நிகழ்ச்சி இடம்பெறும். தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள். இது உங்கள் ஆகாஷ்வாணி திருநெல்வேலி வானொலியின் பண்பலை 102.6.

0: The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not that of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: और आइए श्रोताओं, आप जानते हैं कि दिन के अंतराल में हमारे घरेलू शेयर बाजार ने कैसा प्रदर्शन किया। घरेलू शेयर सूचकांकों में आज मामूली बढ़त हुई। सेंसेक्स 262 अंक यानी 0.3% बढ़कर 77,764 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 95 अंक यानी 0.4% बढ़कर 24,271 पर आ गया। विस्तृत शेयर बाजार में मिड कैप 100 सूचकांक 0.2% गिर

0: गिरा जबकि स्मॉल कैप 100 सूचकांक लगभग सपाट रहा। बाजार बढ़त के साथ खुले और पहले के आधे सत्र में तेजी का रुख रहा, लेकिन दूसरे सत्र में मुनाफा वसूली के कारण दोनों सूचकांकों ने अपनी शुरुआती बढ़त गंवा दी और आज मिलाकर लगातार तीसरे सत्र में बढ़त के साथ बंद हुए।
1: The benchmark domestic equity indices ended with modest gains today. The Sensex rose 262 points or 0.34% to close at 77,764. The Nifty also added 95 points or 0.4% to settle at 24,271. In the broader market, on the National Stock Exchange, the Mid-Cap 100 index slipped 0.2%, while the small cap 100 index ended nearly flat. Earlier, the markets opened higher and maintained upbeat momentum throughout the first half. However, in the latter half of the session, both indices paired their early gains amid profit booking, but managed to close higher for the third consecutive session.
0: सेंसेक्स में शामिल 30 में से 18 कंपनियों के शेयरों में बढ़त दर्ज की गई। सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली कंपनियों के शेयरों में HCL Tech 5.8%, बजाज फिनसर्व 2% से अधिक और टेक महिंद्रा तथा भारती एयरटेल 1.8% बढ़े। वहीं बात खराब प्रदर्शन करने वाली कंपनियों के शेयरों की करें तो एक्सिस बैंक 1.5% से अधिक, SBI तथा महिंद्रा एंड महिंद्रा 1% से अधिक गिरे और लार्सन एंड टूब्रो में 0.8% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई।
1: And in the sectoral indices on the Bombay Stock Exchange, 15 out of 25 sectors ended in the positive zone. Among the key gainers, Realty jumped 2.2%, Focused IT rose over 1.7%, and IT climbed more than 1.5%. In contrast, Power plunged 2.4%, Capital Goods fell almost 2.3%, and PSU banks lost over 1.6%. The overall market breadth at the Bombay Stock Exchange was positive, as shares of 2,257 companies advanced, 1,986 declined and 198 remained unchanged.
0: और अब जान लेते हैं श्रोताओं रुपए का हाल। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 17 पैसे मजबूत होकर 95 रुपए और 22 पैसे पर बंद हुआ। उधर दुनिया की 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में अमरीकी डॉलर की मजबूती को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक अंतर दिवसीय कारोबार में 100.71 पर कारोबार कर रहा था। विशाल, आज की ट्रेजेक्ट्री को आप कैसे आंकते हैं, मार्केट ट्रेजेक्ट्री को?
2: देखिए प्राची, आज तो सब तरफ हरा हरा दिखाई दे रहा है। अगर बाजार की बात करें तो सेंसेक्स ऊपर है, निफ्टी ऊपर है और सोने और चांदी की कीमतों में भी उछाल है। हालांकि ग्लोबल मिक्स्ड क्यूज हैं मोटे तौर पर अगर देखा जाए, और समझने की कोशिश करें तो आईटी सेक्टर जिसने पिछले हफ्ते काफी नीचे खींचा था मार्केट को, खासतौर पे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई सेक्टर से संबंधित जो स्टॉक्स थे उनमें जिस तरह की गिरावट दर्ज की गई थी वैश्विक स्तर पर, उसका सीधा असर भी देखने को मिला था। लेकिन ये आज अच्छा रिबाउंड है, लगभग 2% के आसपास, अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद 1.7% के आसपास की बढ़ोतरी है आईटी सेक्टर के, और आई थिंक वो एक बड़ा फैक्टर रहा है आज बाजार के ऊपर पहुंचने में, ऊपर आने में। इसके अलावा कुछ ग्लोबल क्यूज है, जैसे कि अगर हम कॉन्फ्लिक्ट की बात करें यानी कि ईरान और अमेरिका के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट है उसमें अब लगभग राहत की बात यह है कि थोड़े पॉजिटिव संकेत इस तरह के मिल रहे हैं और थोड़े पुख्ता संकेत मिल रहे हैं। पॉजिटिव संकेत तो लगभग हर हफ्ते मिलते थे और फिर वो नेगेटिव में बदलते थे, लेकिन इस बार शायद पुख्ता संकेत मिल रहे हैं कि अब ये लड़ाई खात्मे की ओर है। लेकिन उससे बड़ी बात यूएस जो जॉब मार्केट का जो डेटा आया है यानी कि जो एम्प्लॉयमेंट का जो डेटा आया है वो बहुत इंटरेस्टिंग डेटा है। अब हालांकि सीधे सीधे देखा जाए तो पिछले 4 महीने में सबसे कम बढ़ोतरी हुई है जो नई नौकरियां बनी है यूएस की मार्केट में, और इस लिहाज से देखा जाए तो वो कोई पॉजिटिव सेंटिमेंट नहीं होना चाहिए। लेकिन क्योंकि वहां फेड रिजर्व के नए गवर्नर आए हैं, उनका स्टैंड बहुत ही हॉकिश है, और उसके चलते ये जो डेटा है शायद ये डेटा थोड़ी सी राहत प्रदान करे इस मामले में कि शायद जो फेड रिजर्व है वो उसका जो हॉकिश स्टैंड है उसमें थोड़ी सी ढील बरतें वो, और इसीलिए शायद जो इन्वेस्टर्स है खासतौर पे जो यूएस के डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं उनका नजरिया मुझे लगता है कि पॉजिटिव ही माना जाएगा। और अगर अमेरिकी बाजार में कुछ पॉजिटिव नजर आता है तो उसका असर बाकी बाजारों पर, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर भी पॉजिटिव ही दिखाई

0: नंबर दो ग्रोथ किस सेक्टर में है, नंबर तीन क्या केवल ग्रोथ इसलिए है क्योंकि जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो पैसा लगा रहे हैं, या ग्रोथ इसलिए भी है कि जो सरकार है उसकी जो नीतियां हैं वो जो इन्वेस्टमेंट हो रही है उसको सपोर्ट कर रही है। तो इस तरह से जो सेक्टर्स को अगर चूज किया जाए तो हमेशा से जो पिछले लगभग साल दो साल से जो सेक्टर्स बने हुए हैं और अभी भी वही बने हुए हैं, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हुआ या फिर स्पेस हुआ या फिर उसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी या न्यू एनर्जी रिसोर्सेज हुआ, पावर सेक्टर जिसकी हम अभी बात कर रहे थे कभी गिरावट दिखाई दे सकती है, आईटी सेक्टर इज ऑलवेज अ ग्रीन सेक्टर, एआई ऑफ कोर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर आप में थोड़ी सी एब्जॉर्ब करने की ताकत है और शक्ति है तो अगर जो झटके बीच बीच में मिलेंगे उसको, तो मेरा कहना है कि लॉन्ग टर्म असेसमेंट करिए और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की सोचिए।
1: राइट,
2: आगे बढ़ते हैं श्रोताओं और रुक करते हैं एशियन बाजार की तरफ। आज एशिया का शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद हुआ। दक्षिण कोरिया का कॉस्पी लगभग 5.8% बढ़ा। पिछले सत्र में हुई भारी बिकवाली के बाद निवेशकों ने कम कीमत वाले सेमीकंडक्टर शेयरों की आज खरीदारी की। इधर जापान का निकेई 1.5%, हांगकांग का हैंगसेंग लगभग 1.3%, सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स 0.5%, चीन का शंघाई कॉम्पोजिट इंडेक्स लगभग 0.5% और ताइवान का आईएक्स मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ। विशाल, अगर हम वैश्विक टेक ट्रेंड की बात करें तो नैस्डैक एक महीने में तकरीबन 3% गिरा है, कॉस्पी 13% गिरा है, वहीं जो महीने भर में निफ्टी है वो 3.3% उसमें बढ़त आई है, तो क्या ये हम कह सकते हैं कि ये ग्लोबल टेक ट्रेंड में रिवर्सल है?
0: देखिए, मैं टेक ट्रेंड में रिवर्सल तो इसे नहीं कहूंगा क्योंकि जब हम कॉस्पी की बात करें या नेस्टेक की बात करें और भारतीय बाजारों की बात करें, एक इंटरनल डोमेस्टिक फैक्टर्स भी बहुत मायने रखते हैं
2: जी।
0: और जहां गिरावट ज्यादा दर्ज हुई है वहां अगर आप थोड़ा सा उनकी इकोनॉमी पे और गहन तरीके से नजर डाल के देखें तो ये भी समझ में आएगा कि वहां जितने पॉजिटिव क्यूज डोमेस्टिकली मिलने चाहिए थे उतने नहीं मिले उन बाजारों को, भारतीय बाजारों को पॉजिटिव क्यूज हमेशा मिले। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि जो ग्लोबल क्राइसिस थी, जो वेस्ट एशिया में जो हो रहा था, मध्य पूर्व में जो हो रहा था, उसकी वजह से जो एनर्जी क्राइसिस थी, उसका सीधा और बड़ा असर इन बाजारों और इन देशों में देखने को मिला। हम पर भी असर पड़ा, ऐसी बात नहीं है कि हम पर नहीं असर पड़ा, लेकिन उस हद तक नहीं पड़ा, उस लेवल तक नहीं पड़ा। और हमारे जो जो फंडामेंटल्स हैं इकोनॉमिक और बाजार के, मार्केट्स के भी, उनमें इतनी कुवत थी कि वो उसको उस शॉक को एब्जॉर्ब कर पाए। इन बाजारों में और इन देशों में भी है लेकिन इनकी निर्भरता हमसे कहीं ज्यादा है
2: जी।
0: इस मायने में क्वांटिटी के मायने में नहीं, लेकिन इस मायने में कि उसका सीधा असर उनकी इकोनॉमी पे किस तरह से पड़ता है। हमारे पास और भी तरीके हैं, और भी हमारे पास खपत के जरिया है, हमारे पास सप्लाई का जरिया है, हमारे पास डिमांड को मीट करने का जरिया है, उनके पास उतने अपॉर्चुनिटीज नहीं है। और इसीलिए आईटी सेक्टर और इस तरह के सेक्टर्स में जब ज्यादा उतार चढ़ाव होता है तो उसका सीधा असर पहले वहां देखने को मिलता है, उसके बाद यहां देखने को मिलता है।
1: राइट, एंड इन सम अदर स्टोरीज, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल टुडे सेड दैट इंडिया इज ऑन ट्रैक टू अचीव $1 trillion एक्सपोर्ट टारगेट्स फॉर द ईयर विद नियरली 15% of the annual exports already recorded in the first quarter. Addressing the Board of Trade meeting in New Delhi, Mr. Goyal noted that India's export strategy is being built around a stronger, more inclusive approach in which every state, district and industry segment is treated as equally important.
3: Our aim is not small. Our aim is to grow in the current year. We were $863 billion last year. We want to grow to $1 trillion export this year. And to reach $1 trillion, our goods export will have to increase from 440 to about 530. $90 billion increase. That is 17% growth in goods. Services will have to grow from 421 to about 470. That is how we'll reach a trillion, which is a growth of about 11%.
1: The minister highlighted that the central government is planning to expand the export base beyond the traditional hubs by making every district in the country an export hub. He said that the government is simplifying procedures, reducing compliance burdens and improving the ease of doing business to support the export ecosystem. Mr. Goyal emphasized the role of Export Promotion Mission in helping businesses with branding overseas, warehouses and exhibitions abroad, and urged exporters to make

0: கீட இந்த பாடலுடன் நிறைவு பெற்றது திரைகானம். இன்னும் சில நொடிகளில் தொடர்வது செய்தி அறிக்கைகள், டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே அபர்ணா சிங். प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे और संशोधित उड़ान योजना की शुरुआत करेंगे। उसके बाद वे बालोतरा में लगभग 1,06,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री बालोतरा के पचपदरा में देश की पहली हरित क्षेत्र आधारित एकीकृत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित करेंगे। लगभग 79,450 करोड़ रुपए की लागत से बनी इस परियोजना को हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और राजस्थान सरकार ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। प्रधानमंत्री जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री गुजरात के साड़न जाएंगे। वहां वे भारत सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत सीजी सेमी के सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। करीब 7,500 करोड़ रुपए की लागत से बने इस संयंत्र में व्यावसायिक उत्पादन शुरू होगा। ये देश की शुरुआती आधुनिक सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण इकाइयों में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया में रहेंगे। उन्होंने कहा कि यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर होगी।
2: प्रधानमंत्री सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहर योग्यकार्ता का भी दौरा करेंगे। वे प्रम्बानन मंदिर कॉम्प्लेक्स जाएंगे, जहां भारत इंडोनेशिया के साथ काम करने की योजना बना रहा है। यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित है, इसलिए भारत और इंडोनेशिया यहां संरक्षण कार्य पर सहयोग करेंगे।
1: प्रधानमंत्री दूसरे चरण में 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। अंतिम चरण में प्रधानमंत्री 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे। भारत ने स्पष्ट किया है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करेगा, तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में ये जानकारी दी। तीस्ता नदी के समग्र प्रबंधन और पुनरुद्धार परियोजना पर श्री जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश में भारत की विकास परियोजनाएं दोनों देशों के बीच तय सहमति के आधार पर चलती हैं। India's
3: development assistance. बांग्लादेश में परियोजनाओं के लिए भारत की विकास सहायता आपसी सहमति से तय किए गए रोड मैप पर आधारित है। इसकी नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। तीस्ता नदी प्रोजेक्ट पर हमारे विचार पहले ही बांग्लादेश को बता दिए गए हैं। तीस्ता मुद्दे पर अपने समग्र दृष्टिकोण में हम इससे जुड़े सभी घटनाक्रमों को ध्यान में रखेंगे।
1: वेनेजुएला से भारत लाए गए एक भारतीय नाविक के शव से अंग निकालने की खबर पर उन्होंने कहा कि भारत ने इस मामले को वेनेजुएला सरकार के सामने उठाया है। भारत ने इस मामले की जल्द और निष्पक्ष जांच करने को कहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की ओर बढ़ रहा है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में वार्षिक निर्यात लक्ष्य का लगभग

15% हासिल किया जा चुका है। सरकार ने बैड बीएमएस, इपोक आईआईएन और लॉसिगी ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से हटाने का आदेश दिया है। यह कदम सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए उठाया गया है। इन ऐप्स का इस्तेमाल ई रिक्शा की बैटरी को ब्लूटूथ के जरिए दूर से बंद करने के लिए किया जा रहा था। मामले की जाँच जारी है और सरकार इस पर लगातार नजर बनाए हुए है। विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स में अमेरिका की जेसिका पेगुला और जापान की नाओमी ओसाका राउंड ऑफ 16 में पहुंच गई हैं। राउंड ऑफ 32 के मैच में ओसाका के डारिया कसात्स्किना को 65 मिनट तक चले मुकाबले में 6-1 6-3 से हराया। वहीं जेसिका पेगुला ने स्पेन की बोजास मानरे को 6-1 6-3 से मात की दी। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: இன்னும் சில நொடிகளில் தொடர்வது செய்தி அறிக்கைகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே அபர்ணா சிங். प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे और संशोधित उड़ान योजना की शुरुआत करेंगे। इसके बाद वे बालोतरा में लगभग 1,06,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखेंगे। वे चूरू सादुलपुर और चूरू रतनगढ़ रेल लाइन दोहरीकरण परियोजनाओं तथा राष्ट्रीय राजमार्ग 125A के 4 लेन वाले हिस्से को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री राजस्थान सरकार के विभिन्न भागों में चयनित लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री गुजरात के साणंद जाएंगे। वहां वे भारत सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत सीजी सेमी के सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। ये देश की शुरुआती आधुनिक सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण इकाइयों में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया में रहेंगे। उन्होंने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर होगी।
2: Prime Minister will also be visiting.
3: प्रधानमंत्री सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहर योग्यकार्ता का भी दौरा करेंगे। वे प्रम्बानन मंदिर कॉम्प्लेक्स जाएंगे, जहां भारत इंडोनेशिया के साथ काम करने की योजना बना रहा है। यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित है, इसलिए भारत और इंडोनेशिया यहां संरक्षण कार्य पर सहयोग करेंगे।
1: प्रधानमंत्री दूसरे चरण में 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। अंतिम चरण में प्रधानमंत्री 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे। भारत ने स्पष्ट किया है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना नहीं बंद करेगा, तब तक सिंधु जल स्थगित रहेगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में यह जानकारी दी। तीस्ता नदी के समग्र प्रबंधन और पुनरुद्धार परियोजना पर श्री जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश में भारत की विकास परियोजनाएं दोनों देशों के बीच तय सहमति के आधार पर चलती हैं।
4: India's development assistance.
5: बांग्लादेश में परियोजनाओं के लिए भारत की विकास सहायता आपसी सहमति से तय किए गए रोड मैप पर आधारित है। इसकी नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। तीस्ता नदी प्रोजेक्ट पर हमारे विचार पहले ही बांग्लादेश को बता दिए गए हैं। तीस्ता मुद्दे पर अपने समग्र दृष्टिकोण में हम इससे जुड़े सभी घटनाक्रमों को ध्यान में रखेंगे।
1: वेनेजुएला से भारत लाए गए एक भारतीय नाविक के शव से अंग निकालने की खबरों पर उन्होंने कहा कि भारत ने इस मामले को वेनेजुएला सरकार के सामने उठाया है। भारत ने इस मामले की जल्द और निष्पक्ष जांच करने को कहा है। विधि और न्याय मंत्रालय के विधि मामलों के विभाग और विधायी विभाग द्वारा संयुक्त रूप से आज से राजस्थान के माउंट आबू में सुधार उत्सव और चिंतन शिविर 2026 का आयोजन किया जाएगा। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस कार्यक्रम में

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे और संशोधित उड़ान योजना की शुरुआत करेंगे। इसके बाद वे बालोतरा में लगभग 1,06,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री बालोतरा के पचपदरा में देश की पहली हरित क्षेत्र आधारित एकीकृत रिफाइनरी और केमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित करेंगे। लगभग 79,450 करोड़ रुपए की लागत से बनी इस परियोजना को हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और राजस्थान सरकार ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। प्रधानमंत्री जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया में रहेंगे। उन्होंने कहा कि यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर होगी।
1: प्रधानमंत्री सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहर योग्यकार्ता का भी दौरा करेंगे। वे प्रम्बानन मंदिर कॉम्प्लेक्स जाएंगे, जहां भारत इंडोनेशिया के साथ काम करने की योजना बना रहा है। यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित है, इसलिए भारत और इंडोनेशिया यहां संरक्षण कार्य पर सहयोग करेंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया में रहेंगे। प्रधानमंत्री दूसरे चरण में 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। अंतिम चरण में प्रधानमंत्री 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे। बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ने तेहरान में ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला सैयद अली खामेनेई के अंतिम संस्कार समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मार्गरेटा ने कहा कि उन्होंने भारत सरकार और भारत के लोगों की ओर से सम्मान व्यक्त किया। उन्होंने हाल के संघर्ष में जान गंवाने वालों के परिवारों के प्रति भी संवेदना व्यक्त की। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि पत्रकारिता को सच्चाई, ईमानदारी और सबसे ऊंचे पेशेवर मानकों के प्रति प्रतिबद्ध रहना चाहिए। नई दिल्ली में साप्ताहिक ऑर्गेनाइजर के 80वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए श्री राधाकृष्णन ने कहा कि लोकतंत्र तब फलता फूलता है जब प्रेस अपनी विश्वसनीयता बनाए रखते हुए लोगों को जानकारी देता है, सवाल पूछता है और जानकारी पूर्ण सार्वजनिक बहस को बढ़ावा देता है। विधि और न्याय मंत्रालय के विधि मामलों के विभाग और विधायी विभाग द्वारा संयुक्त रूप से आज से राजस्थान के माउंट आबू में सुधार उत्सव और चिंतन शिविर 2026 का आयोजन किया जाएगा। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। सरकार ने बैट बीएमएस, इपॉक आई आयन और लॉसिगी ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से हटाने का आदेश दिया है। ये कदम सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए उठाया गया है। इन ऐप्स का इस्तेमाल ई रिक्शा की बैटरी को ब्लूटूथ के जरिए दूर से बंद करने के लिए किया जा रहा था। मामले की जांच जारी है और सरकार इस पर लगातार नजर बनाए हुए है। विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स में अमेरिका की जेसिका पेगुला और जापान की नाओमी ओसाका राउंड ऑफ 16 में पहुंच गई हैं। राउंड ऑफ 32 के मैच में ओसाका ने डारिया कसात्किना को 65 मिनट तक चले मुकाबले में 6-1, 6-3 से हराया। वहीं जेसिका पेगुला ने स्पेन की बोजास मानेरो को 6-1, 6-3 से मात दी। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: நேர்கள் இதுவரை கற்றரசித்த இந்த நிகழ்ச்சி 100.1 எஃப்எம் கோல்டு வழங்கிய நெஞ்சம் மறப்பதில்லை. தொடர்வது ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் செய்திகள், டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே அபர்ணா சிங். प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे और संशोधित उड़ान योजना की शुरुआत करेंगे। इसके बाद वे बालोतरा में लगभग 1,06,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखेंगे। वे चूर सादुलपुर और चूर रतनगढ़ रेल लाइन, दोहरीकरण परियोजनाओं तथा राष्ट्रीय राज

0: राजमार्ग 125A के 4 लेन वाले हिस्से को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में चयनित लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री गुजरात के साणंद जाएंगे, जहां वे भारत सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत CG-SEMI के सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। करीब 7,500 करोड़ रुपए की लागत से बने इस संयंत्र में व्यावसायिक उत्पादन शुरू होगा। ये देश की शुरुआती आधुनिक सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण इकाइयों में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया में रहेंगे। उन्होंने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर होगी।
1: प्रधानमंत्री सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहर योग्याकार्ता का भी दौरा करेंगे। वे प्रम्बानन मंदिर कॉम्प्लेक्स जाएंगे, जहां भारत इंडोनेशिया के साथ काम करने की योजना बना रहा है। यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित है, इसलिए भारत और इंडोनेशिया यहां संरक्षण कार्य पर सहयोग करेंगे।
0: प्रधानमंत्री दूसरे चरण में 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। अंतिम चरण में प्रधानमंत्री 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे। बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ने तेहरान में ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला सैयद अली खामेनेई के अंतिम संस्कार समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मार्गरेटा ने कहा कि उन्होंने भारत सरकार और भारत के लोगों की ओर से सम्मान व्यक्त किया। उन्होंने हाल के संघर्ष में जान गंवाने वालों के परिवारों के प्रति भी संवेदना व्यक्त की। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वॉल्कर तुर्क ने सूडान के रणनीतिक शहर अल ओबेद और उसके आसपास संभावित अत्याचारों के खतरे को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की है। जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद को संबोधित करते हुए उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आगे रक्तपात को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाने का आग्रह किया। विधि और न्याय मंत्रालय के विधि मामलों के विभाग और विधायी विभाग द्वारा संयुक्त रूप से आज से राजस्थान के माउंट आबू में सुधार उत्सव और चिंतन शिविर 2026 का आयोजन किया जाएगा। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। सरकार ने बैट BMS इपॉक IIN और लॉसिगी एप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से हटाने का आदेश दिया है। ये कदम सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए उठाया गया है। इन ऐप्स का इस्तेमाल ई रिक्शा की बैटरी को ब्लूटूथ के जरिए दूर से बंद करने के लिए किया जा रहा था। मामले की जांच जारी है और सरकार इस पर लगातार नजर बनाए हुए है। फीफा विश्व कप में अमरीका के आर्लिंगटन में खेले जा रहे राउंड ऑफ 32 के मैच में मिस्र ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बढ़त बना ली है। मैच के पहले हाफ में मिस्र ऑस्ट्रेलिया से 1-0 से आगे है। इमाम अशू ने 13वें मिनट में एकमात्र गोल किया। राउंड ऑफ 32 के अन्य मैचों में अर्जेंटीना का मुकाबला मियामी गार्डन्स में काबो वर्डी से होगा, जबकि कोलंबिया आज सुबह कैंसस सिटी स्टेडियम में घाना से भिड़ेगा। स्विट्जरलैंड, स्पेन, पुर्तगाल, बेल्जियम, यूनाइटेड स्टेट्स, इंग्लैंड, मैक्सिको, फ्रांस, नॉर्वे, कनाडा, मोरक्को, ब्राजील और पैराग्वे पहले ही राउंड ऑफ 16 में पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही समाचार

0: இன்னும் சில நொடிகளில் தொடர்வது ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் செய்தி அறிக்கைகள். டெல்லியிலிருந்து அஞ்சலாகும்.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे और संशोधित उड़ान योजना की शुरुआत करेंगे। इसके बाद वे बालूतारा में लगभग 1,06,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखेंगे। वे चूर सादुलपुर और चूर रतनगढ़ रेल लाइन दोहरीकरण परियोजनाओं तथा राष्ट्रीय राजमार्ग 125A के 4 लेन वाले हिस्से को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में चयनित लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री गुजरात के साणंद जाएंगे, जहां वे भारत सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत सीजी सेमी के सेमी

0: मास्टर असेंबली और परीक्षण संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। यह देश की शुरुआती आधुनिक सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण इकाइयों में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया में रहेंगे। उन्होंने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर होगी।
1: प्रधानमंत्री सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहर योग्यकार्ता का भी दौरा करेंगे। वे प्रम्बानन मंदिर कॉम्प्लेक्स जाएंगे, जहां भारत इंडोनेशिया के साथ काम करने की योजना बना रहा है। यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित है, इसलिए भारत और इंडोनेशिया यहां संरक्षण कार्य पर सहयोग करेंगे।
0: प्रधानमंत्री दूसरे चरण में 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। अंतिम चरण में प्रधानमंत्री 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे। बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ने तेहरान में ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर आयातुल्ला सैयद अली खामेनेई के अंतिम संस्कार समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मार्गरेटा ने कहा कि उन्होंने भारत सरकार और भारत के लोगों की ओर से सम्मान व्यक्त किया। उन्होंने हाल के संघर्ष में जान गंवाने वालों के परिवारों के प्रति भी संवेदना व्यक्त की। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वॉल्कर तुर्क ने सूडान के रणनीतिक शहर अल ओबेद और उसके आसपास संभावित अत्याचारों के खतरे को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की है। जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद को संबोधित करते हुए उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आगे रक्तपात को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाने का आग्रह किया। विधि और न्याय मंत्रालय के विधि मामलों के विभाग और विधायी विभाग द्वारा संयुक्त रूप से आज से राजस्थान के माउंट आबू में सुधार उत्सव और चिंतन शिविर 2026 का आयोजन किया जाएगा। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। सरकार ने बैट बीएमएस इपोक आईआईएन और लॉसगी एप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से हटाने का आदेश दिया है। यह कदम सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए उठाया गया है। इन ऐप्स का इस्तेमाल ई रिक्शा की बैटरी को ब्लूटूथ के जरिए दूर से बंद करने के लिए किया जा रहा था। मामले की जांच जारी है और सरकार इस पर लगातार नजर बनाए हुए है। मौसम विभाग ने आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। पूर्वी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक, तेलंगाना और विदर्भ में तेज बारिश हो सकती है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मराठवाड़ा, पश्चिम राजस्थान और दक्षिण भारत के विभिन्न हिस्सों में भी आज तेज बारिश का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: பொங்கும் மங்கலம் நிகழ்ச்சியில் இதுவரை சொர்க்காயல் நத்தம் எஸ் ஏ சிவானந்தம் அவர்களின் நாகஸ்வர இசை கேட்டீர்கள். பள்ளிக்கொண்டா பி ஆர் முருகன் அவர்கள் தவில்.
1: இன்னும் சில நொடிகள் தொடர்வது ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் செய்திகள். டெல்லியிலிருந்து அஞ்சலாகும்.
2: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே ஃபர்ஹத் நாஸ். प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री मोदी राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री जोधपुर में उन्नत उड़ान योजना का भी शुभारंभ करेंगे। इसके बाद श्री मोदी बालोतरा जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में भर्ती किए गए लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज शाम गुजरात के रवाना होंगे, जहां वे सानंद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया में रहेंगे। उन्होंने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर होगी।
3: प्रधानमंत्री सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहर योग्यकार्ता का भी दौरा करेंगे। वे प्रम्बानन मंदिर कॉम्प्लेक्स जाएंगे, जहां भारत इंडोनेशिया के साथ काम करने की योजना बना रहा है। यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित है, इसलिए भारत और इंडोनेशिया यहां संरक्षण कार्य पर सहयोग करेंगे।
2: प्रधानमंत्री दूसरे चरण में 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। अंतिम चरण में प्रधानमंत्री 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड में होंगे। विधि और न्याय मंत्रालय के विधि मामलों के विभाग और विधायी विभाग द्वारा संयुक्त रूप से आज से राजस्थान के माउंट आबू में सुधार उत्सव और चिंतन शिविर 2026 का आयोजन किया जाएगा। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कार्य

0: में उपस्थित रहेंगे। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब तक 1,02,000 से ज्यादा गणना प्रपत्र डिजिटाइज किए जा चुके हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय के अनुसार दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत लगभग 33,14,000 फॉर्म बांटे गए हैं। दिल्ली में घर घर जाकर मतदाता सूची के लिए गणना प्रपत्र बांटने का काम अभी चल रहा है। इस प्रक्रिया के तहत 13,000 से ज्यादा बूथ स्तरीय अधिकारी इस महीने की 29 तारीख तक घर घर जाएंगे और मौजूदा मतदाताओं का सत्यापन और अपडेट करने के लिए पहले से छपे हुए गणना प्रपत्र की 2 प्रतियां देंगे। दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर के बीच दर्ज की जा सकती हैं। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को जारी की जाएगी। मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन गणना प्रपत्र भी भर सकते हैं। सरकार ने बैट बीएमएस ईपोक आईआईएन और लॉसिगी एप्स को गूगल प्ले स्टोर और गूगल ऐप स्टोर से हटाने का आदेश दिया है। ये कदम सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए उठाया गया है। इस ऐप्स का इस्तेमाल ई रिक्शा की बैटरी को ब्लूटूथ के जरिए दूर से बंद करने के लिए किया जा रहा था। मामले की जाँच जारी है और सरकार इस पर लगातार नजर बनाए हुए है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने एमएसटीसीएल लिमिटेड के माध्यम से हॉकर 800A विमान की नीलामी की है। विमान को 3 करोड़ रुपए में नीलाम किया गया है। निदेशालय ने एक बयान में बताया कि इस विमान को पिछले वर्ष 7 मार्च को तलाशी अभियान में जब्त किया गया था। ईडी की हैदराबाद क्षेत्रीय इकाई ने अमरदीप कुमार, कैपिटल प्रोटेक्शन फोर्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम मामले में राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से विमान को जब्त किया था। जांच में 792 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की सूचना मिली है। नीलामी से प्राप्त होने वाली राशि का इस्तेमाल वास्तविक निवेशकों को मुआवजा देने के लिए किया जाएगा। मामले की जांच जारी है। बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ने तेहरान में ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई के अंतिम संस्कार समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मार्गरेटा ने कहा कि उन्होंने भारत सरकार और भारत के लोगों की ओर से सम्मान व्यक्त किया। मौसम विभाग ने आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। पूर्वी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक, तेलंगाना, विदर्भ में तेज बारिश हो सकती है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मराठवाड़ा, पश्चिमी राजस्थान और दक्षिण भारत के विभिन्न हिस्सों में भी आज तेज बारिश का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर। Prime Minister Narendra Modi will be on a day-long visit to Rajasthan and Gujarat today. The Prime Minister will first travel to Rajasthan, where he will inaugurate the new terminal building of Jodhpur Airport this morning. The project, worth 480 crore rupees, is designed to handle up to 20 lakhs passengers annually. He will also launch the modified Udaan scheme in Jodhpur. The scheme aims to accelerate the next phase of aviation-led development. Thereafter, Mr. Modi will travel to Balotra, where he will dedicate, inaugurate and lay the foundation stone for development projects worth approximately 1.06 lakh crore rupees this afternoon. These projects span multiple sectors including petrochemicals, urban transport, railways, roads, renewable energy and power transmission. Mr. Modi will also hand over appointment letters to around 54,000 youth recruited across various departments of the government of Rajasthan. Later in the evening, Prime Minister Modi will travel to Gujarat, where he will inaugurate the CG semi-outsourced semiconductor assembly and test facility at Sanand. The government has reiterated that the Indus Waters Treaty remains in abeyance in response to Pakistan's continued sponsorship of cross-border terrorism. Briefing media in New Delhi last evening, spokesperson of the Ministry of External Affairs, Randhir Jaiswal, said, India's position on the Indus Waters Treaty is consistent. He said, Pakistan must credibly and irrevocably renounce its support for cross-border terrorism. On Tista River Comprehensive Management and Restoration Project, Mr. Jaiswal outlined India's approach to